थो रेडियो नेपालका नेपाल भाषा समाचार जे उपेश पाखिनी नातिसा थौ नेपाल सम्बत चिन्स सब पिखु द बचलागा अष्टमी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद ज्याको वैगो आर्थिक दह या नीति ओ ज्याजो लिसे बजेट देखेबले आम नागरिक या त तपेङ्क बोती क्याके त सुझाव मुखेको पोर्टल याको कुदो नीति ओ ज्याजो स जनता यको थिए शासन व्यवस्था या त पारदर्शी ओ जनमुखी देखेको तातुना सुझाव मुखेको पोर्टल याको गुख पोर्टल पाखे देश विदेशे दिपी सकल नेपाली नागरिक विशेषज्ञ व नीति निर्माता पिनसँग बजेट देखेको व विकास या प्राथमिकता या स्वापूर्ति थपिनिगो वा सुझाव तपेङ्क सर्ख्या त फैगो कथ थज्यागु पोर्टल ह्याकुगु प्रधानमन्त्री बालेन शाह या प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहला दाइतिगु ख सरकार थोज्या ख समृद्ध नेपाल देखेको तातुना पोङ्के त सकल या ग्वाली या त इनाप नाप यागुदु सरकार बजारे जुयाचङ्गु अनियमितता कृत्रिम बेसा बा थक्यागु उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण यागु तातुना सोमबार निते देनियङ्क विशेष अभियान याकेतिङ्गु दो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्र परिषद ज्याकु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मङ्का कुतल आम नागरिक या निथ जीवन नापो स्वागु बेसा बा था वनिगु लि उकिया त जेङ्केगु धागु ख अभियान कार्यान्वयन नीति गृह मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय व फुक्क प्रदेश या मुख्यमन्त्री ज्याकु व स्थानीय तह या त प्रधानमन्त्री व मन्त्र परिषद या ज्याकु या त उज बिथङ्गुगु धागुदो जेठ तिन गते तकु थो अभियान फुक्क स्वापुदुगु निकाय नागरिक समाज व सञ्चार कर्मी या त ग्वाली व बजारे जुइगु अनियमितता या सुच बित इना यागुदो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विधि पाखे पलिस्ता जुगु पद्धति व परम्परा पालना या त ब्यादिगु दु कानुन दिवस 2083 या लसतेमिक सर्वोच्च अदालत गोसागो गु ज्याजोस राष्ट्रपति पौडेल कानुन दोषीय नीति ग्याइगु व निर्दोषीय नीति आशा भरोसा व सारा जिमा तैदिगु ख राष्ट्रपति पौडेल नेपाल या संविधान या मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता कथा नुगु कानुन देखेगु व प्रचलित कानुने फिङ्केको याना आधुनिक पद्धति व प्रविधि या त छेला आम नागरिक या न्याय अपिक पलिस्ता या मागु मुद्दा या त याक्न जेङ्के त ब्यादिल वेकल विधि या शासन कायम यागु व न्यायिक मुह मान्यता या क्षयकरण या मोब्युसे न्यायपालिका जनास्ता अफ्रिकेमा आगु खाँ बहव्यादिल ज्याजोसँग कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश स्वप्न प्रधान मल्ल छुन डर व प्रभावे मलासे न्याय सम्पादन या त सकल न्यायाधीश या त इनापियाना दिल सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद पिन्त निनुयङ्क या संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण भिक निसेन यहाँको गुदो सक्षम सांसद सशक्त संसद दैको नारा नाप थो प्रशिक्षण यहाँको ख यलया जालख्याले मिग निसे थो प्रशिक्षण यहाँको गु धागुदो नेपाली काङ्ग्रेस या सभापति गगन कुमार थापा राष्ट्रिय मुद्दा सरकार या त पार्टी ग्वाली बिगु थैदिगु दो पार्टी केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हिग धनगढी गोसागोगु प्रदेश स्तरीय मुन्या ज्याजोसँग सभापति थापा शासन व अर्थतन्त्र भिङ्के गु कथ ग्वाली याना लोकतन्त्र या त ब लागेगु यता दिल पार्टी उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा नुगु जोसनाप पार्टी या त न्यने झ्याकेगु यता दिल महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पार्टी दुने सुयातन कोमतिले से छप्प छती याना न्यने झ्याकमागु खाँ बहव्यादिल ज्याजोसँग नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलीय नेता एवं मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पार्टी या त छप्प या त इनाप याना दिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह व नेपाल नीति साउदी अरेबिया राजदूत फहद मोहम्मद आजमी मिनिकर पवित्र हज यात्रा नीति मक्का उनिपी नेपाली हज यात्री पिन्त विदाई यनादिको दो विदाई ज्याजोले वे कमिसन नेपाल व साउदी अरब तथा धार्मिक सांस्कृतिक नाप थथ या स्वापु अझ बलाकी विश्वास पङ्का हज यात्रा पोतिकायादि पिन्त
सुथा ल्यामाताका पिन्तुना व्याधिलाई वेकअपिसँग हज इस्लाम धर्मलाई पिनिको महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था अनुशासन वा आध्यात्मिक एकता या प्रतीक जुगो चेतना यात्री पिनिको सहज व्यवस्थापन सुरक्षा मा कथा सहकार्य नीति स्वापुदुगो निका या ध्यान चालाका यादिल सोनी गस आपल स या ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण ओ ट्राफिक व्यवस्थापन या त अफिके त ट्राफिक प्रहरी ज्याकुन ह्याकुको विशेष अभियान कथम हिक निस आपल सवारी साधन या चालक या त कारवाही यागु दो अभियान या चोले चालक या त ट्राफिक नियम पालना सुरक्षित या त मत वो नो हर्न सम्बन्धी जनचेतना तक बिगु ट्राफिक प्रहरी ज्याको या प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदी धाइदिएको छ। कने निसे सरकारी ज्याकुसँग राष्ट्रिय सुचुपिचु वा न्याके तेङ्गुदो सरकार कने निसे जेठ एक गते तक सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तह या फुक्क ज्याकुई सुचुपिचु यागु तात्ना तगुदो सरकारी वा शैक्षिक संस्था या त स्वच्छ स्वस्थ वा व्यवस्थित लकस देखे त सुचुपिचु यागु कथा छगु ज्याविदिना पिथङ्गु प्रधानमन्त्री वा मन्त्र परिषद या शाखा अधिकृत सुवर्ण ब्रजाचार्य ताइको ख। सहकारी या दा शङ्कुको धासे मञ्जुश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड या नायो नारायण प्रसाद घिमिर या त जोङ्गुदो सहकारी दा त पिन त पेद निसे दित मोबिगु धका बागमती प्रदेश सरकार या सहकारी मन्त्रालयसँग भो तहकुली उकिया लितस्या प्रहरी वृत बहु द या प्रहरी किमिर या त जोङ्गु ख सहकारी सत्या मनुतेगु चिन यागु करो दाली त बिमानी दार्चुल्या बा ब्यास गाउँपालिका दुई दुमिङ गामे मोटरगाडी थेङ्गुदो नेपाली सेना तुसार पानी धैको थास दुमिङ तक चिन्नीको किलोमिटर ल दिएको गुली शुक्रबार निसे ल चागु ख तुसार पानी निसे टिङ्कर तक नेगुगु किलोमिटर सडकमध्ये आतक निजीको फुटी चिन्यागु किलोमिटर

0: 就你那边发生咩事情？其实你那海底了，什么也那做，对个咪？啊，你托咪，不是干嘛事儿？啥嘞？对个托咪卡？जुन नामी भाजे मेजु पिन छिसने ना हे दिल वर्षा कर्मचारी असले दुगु समयना ज दैगु थु गनचुंग भ्या खला जि मसु तर चने थु बचा पप्र्याप पाके जं वंगु थेन छु अले थु मेनिना अवश्य न छित हे पिसे चन जुई दैगु आशा बलासा जिंक याचना अले थु जागु थिति कथं यागु मे त थंकने यागु छुड्यागु आ छौकथं फुलांगु ट्रेडिशनल मे त तोता अले छौकथं थ्याकु खसा ननुगु मे जने वया चङ्गु दुमुखला ओके अवश्य न नुनुगु मे त एजिन जना वैगु न दु अलि आधुनिक मे त नन्दु नेवा भाषा यु दासनि नमे भाजु मेजु पिन चासा 42 11 700 एक्काइसो 42 11 700 36 चिना पाँच सल ब्याका चनागु दुल अलि छि त मनि लुगु खन जि सम्पङ्का दिफु ओके अनि ति यदका फोन ल्या ब्या चनागु ख 42 11 700 एक्काइसो 42 11 700 36 अलि थो ज्या चन याका चनागु दु जिरु विश्रेष्ठ दासा प्राविधिक कथन जिता ग्वाली ब्या चना दिगु दु प्राविधिक भाषा मोहम्मद अलि नामी भाचु मेजुबी ठिकु देशे नुगु सरकार वगु दु नुगु सरकार परिस्था जुइ सात थिति कथै यागु कुन खिने गु ज्याला जुइ एसान्तबी सरकार न छौको थन थ्यागु खसा थगु राजनीतिक स्वार्थ अले थगु पार्टीगत स्वार्थ तोता देवो जनता धाथे यागु गरिब निमुखा विपन्न तेगो हात्या चुख छारासा गरिब विपन्न निमुखा मजदुर किसान धैपिए दे यागु टिसाख थुमिसह देया त हना बनायन देया त धस्वा के तिब बिउपी हिच तिहा किपी पिनेगु वर्ग ख ओके उमिता ले लसतान झाकेको नीति सरकार बालागु कथ छौको त दुनुङ्ल निसिन सोचे या मागु ख दासे आदा फोन सप्ति दिमा पास लस्कु सेना छ न हजुर हेलो जोजेलोपा ज्याजेलस कुछ दु
1: कमल बुनेको गोपाल भूमि
0: गोपाल भूमि ज्यू गोपाल ज्यू माफु हजुर जितन प्याची अहिले गोपाल ज्यू जेना भविष्य रुख
1: असारण पिकाना श्रावण क्लास जी पकाए खट आठ पैसा लास्ट हप्ता पिकाई जो आठ जे दोसो तेसो हप्ता हे एक एडमिशन कया कलेज एक क्लास सुचारू यात्रा जुटिन चुंगा अर्को सरकार अधिकारी पनि थोरै पढ्न टाउ मरुनी मलाई आठवन पढ्न गए एक क्लास ए मलाई जैसे जो सरकार भालो भालो जाएर चुन्डु ख त्यो गुडी खटो आयो सरकार यहाँ जाएर विवाद नै भए चुन्डु मलाई टोकै जाएर बलै ध्यान मरु टोकै जाएर बमलै ध्यान मरु
0: गोपाल भूमि कमल विनायक खोप पाखे फोन सप याना दिगु फोन सप तया दिगु खसाले वैक ल यदि चाहे जुसा यदि ज्या याको खसा यहाँको ज्यान याफु तर छुदासा छौ दुनि धापु थगु ज्या याको इच्छा शक्ति देमा इच्छा शक्ति त ततदासा छुन कथया गु जिन छु याफु दैगु चाहिँ मनन तुन दासा अवसिन वो पुनि तर वो मर्यो गु हुनी हे याना छौकथन लिपालाई गु ख अले छौकथन ज्या मजुगु ख थ्वे खया त वैक्ल तिप विषेन दैदिगु ख अले खेतला आथ शिक्षा नापा स्वागु तिथि विशेष आ शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल नुवा नाचना दिगु दु तर वैक्ल वैक्ल छौकथन जानकारी बिहा दिगु ख वैक्ल सच्छीको ज्यादल सरकारी आगो सच्छीको ज्यादल पिबोबले ठिति कथै आगो स्कुल थिएके बुनेकुथी थिएके अले अनाचाने छक जग भर्नाका आगो अलि चाहिने फी निसेका थिति ख चाहिने निशुल्क यागु अलि थिति शीर्षके तया चाहिने थोथोके ढेपाका आगु थोथोके ढेपा मकायागु दैगु कथन कोसिना दिगु ख तर थो चाहिने लागु मजो दैगु कथन यो ख वया चङ्गु दु ओके थो चाहिने सरकार निर्णय याना जग मजु स्वपु दुगु निकाय नापाना सल ब्याका अले स्वपु दुगु निकाय सन गे आशा गथे आशा झिगु दे बानलाई थगु व्यक्तिगत थगु सामुदायिक स्वार्थ सिवेन भतिजा थगु स्वार्थ लक्षणा देव जनता अले सकल विद्यार्थी तेगु देयापी कर्णधार तेगु विशेषण सोचिया फसा अवश्य नै झिगु दे न बानलाई झझदाइदेगु आशा भल साय ख फोन सप्ति सोम पासा दु मधु झिन्छक निनासेमा ल हजुर सायद फोन सप्ति सुन मधु उके जी आछपु मेदे छ मेन आफ्ना पाँच चितल सुकुस याना है चुने निनामी भाजु मेजु पिन छासँग बयालिस एघार सात सय एक्काइसो बयालिस एघार सात सय छत्तिस दासा हान छपु नेवाते गुए मेने ने मेन आफ्ना पाँच चितल सुकुस याना चुने जहाँसँग बयालिस एघार सात सय एक्काइसो बयालिस एघार सात सय छत्तिस अहिले थो ज्याजु चिसँग रेडियो नेपालले थिति फ्रिक्वेन्सी निसेकया थिति फ्रिक्वेन्सी ट्याबले अन्ठानब्बे सय एक सय तिन मेगा हर्स निसेकया वेबसाइट www.radionepal.gov.np वो www.radionepal अनलाइन अले रेडियो नेपाली आगु हे फेसबुक पेज पाखेना छिस झिमिगु रेडियो यता हलिनियङ्क चना निना दि फुदासा अन्ठानब्बे सय एक सय तिन मेगा हर्स न छिस नेपाल न्याङ्क चना निना दि फु अहिले नापा थिति वेबसाइट पाखे निना दि फुदा चाहिँ आछपु मेने ने मेन आफ्ना पा चितलसको छ या नयाँ चाहिँ दासे फोन सर्ते सुम पासा झागु दुधका दैदिल वेके तलसको छ या हजुर हेलो हेलो
1: हजुर
0: हजुर जसोलो पाज आज लसको छ दु गर्न सुनवाना दिया थे
1: अब तो के नेपाली परे हिन्दी परिन
0: हिन्दी होइन नेवा नेपाल भाषा हो जो कहाँदेखि गर्नुभयो
1: हजुर म हेटौँडा मकानपुरबाट हो
0: अनि हजुर के नेवार हो जो निरामी भाजु मेजुपी वेक्ल सायद खला ऊ नेवा खला सुख जे उसले मसिला तर नेपामी ख वेक वेक्ल झिमेको ज्याजो माया म तिना यना यनाचना दिएको खनि ऊ क्या नीति वेक त एकैको सुभा ब्याजना तर छुया गुली नेवा त्यस सुनि गिने चौपिस अहिले दुने चौपिस न गुलिसिन नुया मफुको नेपा भा नेवा भा नुया मफया चङ्गो कन्डिसन न दु उकिन थुज्यागु थिति कथयागु झिगु गुली न मातृभाषा दु आदिवासी जनजाति ते गु लागा नापा इमीको मौलिकता नापा पैसा नापा अहिले इमीको थिति लजका अहिले नखा चखा नापा स्वागु यो यो त मसिका मौलिकता दु थुज्या गुली त माका ते गु नीति थुज्या गुली त छोड्ने अलि न्याङ्क मसिकैको नीति न थुज्यागु तजिलजिया त सदा सदा माका तेगु नीति न आयागो सरकार कुतै यही जी दिएको आशा बलसा ऐना प्यासे आधा सा थोमे छिगु नीति देशना सुना

0: क्याफ हुल्डी गे लावारी निवान मुबा कादेदा छोरगान लेना लातोबा तामकादे खाबामुला ओसेम रोनिदा लानन खाल्ला जानकारी पिनबा तामेनन खासी टिबामुला राङनिसे दाते तिला तिला गेतांग कादे खारङलासी सेङबान खाबामुला ओ
1: वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरेर
2: वैदेशिक रोजगार विभाग थिन डिक्सिङ अनि से गे लावन खाबामुला ओसेम स्यान लामन गेन्दन गादे थिनुन डिक्सी हुल्ला लामन जोंग्रिनिसे लामन खाल्ला छोरगान ना गेतांग दे सेङबान खाबामुला विशेष लासी वैदेशिक रोजगार विभाग लतामरी लुम्बिनी प्रदेश नाङला जोंगदेरी गेलाबान खापमला ओसे अनलाइन गेम फर्म बरबलाबारी खामबासे खपदामा निक्लाला हुलबदानुन सेवा पिनमान खापमला विशेष लासी छोरगान लेनालाबा गेतांगा देजा चुथुमरी गेलाबान खाबा एनजीओ कादेथेन डिक्सिनोन सेगमान खापमला ओसे गे थुतपन गादे सेनोन लामान खाल्ला छोरगान लेनालाबा गेतांगा दे सेगमान खापमला
0: फिरग्याफ हुल्डी निसि गेलाबान खाबा कादेदा गिच्छा रेमरिजा बीमा लावा नांगबा मुबा लिचा एनसे बीमा आलावा ताम कादेनोन खासी टिबा मुला थेरांग तासम
2: सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य आबद्धता दोबासे लागिकला योगदान टाङ्गा फानुन तोबासे फाबनन नाङसि टिपमला ओसम फिरका भ्युलिनिसि जिनमा लिचाजा लामन से टाङ्गा आफा बमराङबमला थेराङासि आफा माजा लिचा खाजी बैनुन खाल्ला समस्या ताजी तिले आजबा घटना कादी ताजी बिसाम थेदुरी नेपालले खासी जिम्मा लिचा राङला दिम थिमे थेन पीडित राङसेन मानलाबा खर्च सुताइनुन आयाङबारी खाम्बमला ओसेम बोर्डला गेदिमसे पिनमान खाबा खाजी बैनुन सेवा सुविधा कादेनुन किनमारी आखाम्बमला सामाजिक सुरक्षा कोष रिनिबा दुईरी योगदान लट्टाङ्गा फाबा मुसाइनुन नियमित फादो बटाङ्गा आफा बमराङमान खाम्बमला त्यतापछि गन्से दान्दे सामाजिक सुरक्षा कोष रि नियमित टाङ्गा युदो बा ताम्री छोरगान
3: रोलासे पिनगो बिसिपाङबारी गारो ताबमला थेराङनलासे संस्थागत रूपरी निबाकातेतानन चोरी विवरांगबा गे आहिन्ना थेनसे अर्कुन गे लादोबा थेन चोरी विवरांगबा ओरसे तिलानन सेवा सुविधा गदे आपिनजे बिसि गुनासो लाबन खापगादेनन लामा खाबमला तेसलामा फिरक्याप हुल्डी गेलाबारी मिपुइबा गेन्दुन गदेसेनन जिम्मेवार तासि गेलाबारी गाला मोइजनमला यांग फिरक्याप हुल्डी दिबा विवाह गेलाबारी बिसिनि बहिन्ना थेरिनिसे दुगाल नातोसम समस्यारी परप्ता सिटी दोसम ठगिरी परप्ता सम चुरी बिबरांगमा ओरसे निसि तिलाइनुन सेवा सुविधा गदे आयाङसम याङदा आजबा तबरी खाममला थेतपछि व्यक्तिगत अथवा संस्थागत तिल्दामन मुसाइनन गोगिनुन माध्यम ग्याम फिरक्याबुली गेलाबारी निबन मुला बिसाम राङ गेलाबारी निबा युल राङसे गेला दब कम्पनी ज्याबा हिन्ना कि आङिन थे कम्पनी ब्ल्याकलिस्ट मुला कि आरे थे कम्पनी खाप लेभललाई हिन्ना खाम्जी बिसाम चुबिमा गाछ निबा गदे ज्यानलासे सेवा गदे पिनमा मुला कि आरे बिबरांगमा बिरान ताम गदे घोसे चेकेन निदोब मुला ओसेम संस्थागत रूपले मिपुई बगादे जिम्मेवार तासि गेलाबारी नन गाला मोइजन मुला
2: चुनुन अन्तर्वार्तालाई छ्याम छ्याम रि तिनीलाई गेताङ ग्यामेनुन फेसिनेमा दुई तासिजेन बमला गेताङ मुगलानलाई गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारीलाई फेरि राङला तिल्लाई सल्लाह सुझाव थिएन प्रतिक्रिया गर्दै मलाई बिसाम गनीलाई इमेल ठेगाना welfare@febgov.np थिएन info@febgov.np रि इमेललाई बढी राङ्दा मोहिचेन मुला
0: तिला राङ्दा थामुला फिर्क्याप हुल्डी गेलाबारी निबा धुइरी ठगिरी परब ताबा मुसाम खारङरी नितोबा मुला
2: यदि राङ खाजिबाइनुन खाल्ला ठगिरी परब ताबा मुला बिसाम राङ वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार चुराङमा ताम्ला मुद्दा अथवा उजुरी बोर्से वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले नितोबा मुला
0: इजाजत पत्र आकिन्ना फिर्क्याप

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे प्रादेशिक समाचार। रेडियो नेपालसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहके मर्यादित, स्वच्छ आ वातावरण मैत्री बनेबाक लेल आबयवला बैसाख 28 गतेसँ जेठ 1 गते धरि देशभरि सरसफाई सप्ताह 2083 सञ्चालन करबाक घोषणा कयलक अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालय एक विशेष मार्गदर्शन जारी करैत संघीय मन्त्रालयसँ स्थानीय तहधरिक सभ निकाय सभके एहि अभियानमे सक्रिय सहभागी होयबाक लेल निर्देशन देलक अछि। एहि राष्ट्रीय अभियानक औपचारिक उद्घाटन अगिला बैसाख 28 गते भिनसर 8:30 वीर अस्पतालसँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताक उपस्थितिमे होमयवला तय भेल अछि। एहि अभियानसँ सरकारी निकाय सभमे न्यून लागतमे अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होयबा सङ्ग सर सफाई मापदण्ड कार्यान्वयन करबाक लक्ष्य सरकार द्वारा जारी कयल सर सफाई सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन 2083 समावेश अछि। सरकारी कार्यालय सभमे नियमित सर सफाई आ गन्दगी व्यवस्थापनके स्पष्ट मापदण्ड नहि भेल सेवा प्रवाह, कर्मचारी आ सेवाग्राहीक स्वास्थ्य मे नकारात्मक असर पड़ि रहल संदर्भ में ई मार्गदर्शन तैयार कयल गेल अछि। सरकारी निकाय सभ में स्वच्छ आ सुरक्षित कार्य वातावरण कायम करबाक लेल प्रभावकारी सर सफाई व्यवस्थापन आवश्यक अछि, मार्गदर्शन के पृष्ठभूमि में उल्लेख कयल गेल अछि। मार्गदर्शन अनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बरापत्र, संकेत चिन्ह सब स्पष्ट आ व्यवस्थित हेबाक चाही। भित्ता सभमे मरम्मत आ रङ्गरोगण सेहो कयल जायत। मुख्य सेवा क्षेत्र प्रवेश द्वारके आकर्षक आ सफा राखल जायत। एहि सभ शौचालय सभके दुर्गन्ध रहित बनाओल जायत आ नियमित जलके व्यवस्था सुनिश्चित कयल जायत। हाथ धोबाक स्थानमे साबुन अनिवार्य कयल गेल अछि आ दैनिक सफाइक अभिलेख राखय पड़त। शौचालय सभ महिला मैत्री, सैनिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त, सम्भव हवा धरि अपाङ्गता मैत्री होबय पड़त। ओतय मात्र नहि भऽ कार्यालय सभ कमतीमे दू प्रकारक डस्टबिन राखबाक, एकटा सड़यवला एकटा नहि सड़यवला गन्दगी अलग करय पड़त। पुराना काज आ काम नहि लागयवला सामान सभक उचित व्यवस्थापन करबाक सङ्गे खुला रूपमे गन्दगी जरेबाक लेल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाओल गेल अछि। कार्यालय परिसरक 100 मीटर आसपासक क्षेत्र, नाली आ ढल सभ सफा होबय पड़त। पार्किंग क्षेत्रक सुधार आ अव्यवस्थित तार आ पोस्टर सभ हटाबाक सूचक राखल गेल अछि। कार्यालयमे हेल्प डेस्कक व्यवस्थाक सेवाग्राही सम्मानित आ व्यवस्थित महसूस करबाक वातावरण बनाओल जायत। सूचना प्रणालीके पूर्ण रूपमे सञ्चालनमे आनल जायत। संघीय संसदक बजट अधिवेशन काल्हि सोम दिनसँ प्रारम्भ भऽ रहल अछि। काल्हिसँ सरकारक नीति कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत होमयवला भेल अछि। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय संसदक दुनू सदनके संयुक्त बैठकके काल्हि सम्बोधन करबाक कार्यक्रम रहल संसद सचिवालयक प्रवक्ता एक रामगिरी बतौलनि। नेपालक संविधानक धारा 95 अनुसार राष्ट्रपति अपराह्न 4 बजे सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक ओ जानकारी देलनि। एहि धारामे प्रतिनिधि सभाक निर्वाचन भेलाक बाद पहिल अधिवेशन आ प्रत्येक वर्षक पहिल अधिवेशन प्रारम्भ भेलाक बाद राष्ट्रपति दुनू सदनके संयुक्त बैठकके सम्बोधन करबाक प्रावधान अछि। राष्ट्रपति पौडेलसँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हेबाक संयुक्त बैठकमे अपराह्न 3:45 आगाबे उपस्थित हेबाक लेल प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभाक सदस्यके संसद सचिवालय अनुरोध कयलक अछि। एहिसँ पहिने अपराह्न 2 बजे प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रसभाक बैठक होयत। संसद सचिवालयक अनुसार प्रतिनिधि सभाक बैठकमे राष्ट्रपतिसँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र सम्बन्धमे जानकारी देबाक, मन्त्री परिषदक हेरफेर सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयसँ प्राप्त सूचना सम्बन्धमे सदनके अवगत करयबाक सम्भावित कार्यसूची रहल अछि। एहिना सभामुखक अनुपस्थितिमे बैठकक अध्यक्षता करबाक सदस्य सभक मनोनयन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के नियम 260 अनुसार जारी भेल बाधा आर काव फुकाव अनुमोदनके लेल पेश होयबाक, प्रतिनिधि सभा नियमावलीक मसौदा पेश होयबाक सहित कार्यसूची अछि। एहि तरहें सरकारसँ जारी भेल सार्वजनिक खरीद दोसर संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारीक पद मुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि पहिल संशोधन अध्यादेश 2083 सहित 8 अध्यादेश पेश करबाक कार्यसूची रहल संसद सचिवालय जनौलक अछि। राष्ट्रसभाक बैठक में सेहो ई अध्यादेश सब पेश होयत।
सामुदायिक विद्यालयमे प्रविधि मैत्री शिक्षाक अभ्यास विस्तार करबाक उद्देश्यसँ सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 इलामक समालबुङ माध्यमिक विद्यालयक विद्यार्थीके स्ट्रीम एजुकेशन सम्बन्धी 5 प्रशिक्षण सञ्चालन कयलक अछि। विज्ञान, प्रविधि, इंजीनियरिंग, कला आ गणित समावेश होयबाक स्ट्रीम एजुकेशन सम्बन्ध में जानकारी देबाक लेल कक्षा 8, 9, 10 आ के 40 विद्यार्थी के लक्षित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कयल गेल। वार्ड अध्यक्ष उर्गेन बमजन जानकारी दलन परंपरागत शिक्षण सिकाई से बाहर निकल कर विद्यार्थी के प्रविधि मार्फत अन्वेषणमुखी सिकाई दिस प्रेरित करबाक लेल आवश्यक रहला कारण प्रशिक्षण आयोजन कयल गेल। आय से शिक्षा गुणस्तर सुधार में योगदान पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कलन। नगरपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइराला विद्यार्थी के सैद्धांतिक सिखाई अभ्यास शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर नहीं कायल जा सकबा कारण समूहगत छलफल अनुभव आदान प्रदान अनुसंधान मुखी सिखाई में जोर दल गया बतौलन। सहजकर्ता अश्विन जोशी विद्यार्थी के विभिन्न विद्युतीय उपकरण के कार्य प्रणाली, स्वचालित प्रणाली निर्माण आ 3D प्रिंटिंग के प्रयोग संबंध में सिखाई भर जानकारी दलन। विद्यार्थी स्वयं कल्पना कैल वस्तु स्वयं डिजाइन आ प्रिंट कर सकते हैं। जीवन उपयोगी ज्ञान आ सीप हासिल हैत जोशी कहलन। प्रशिक्षणक स्रोत व्यक्ति कुशल भट्ट अनुसंधान पाठ्यक्रम निर्माण प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय तहक शिक्षण में रुचि राखवला विद्यार्थी के लिए स्ट्रीम शिक्षा से नया अवसर सृजना करबाक बात बतौलन। अभियान में एहिठामक 7 सामुदायिक विद्यालय के 214 विद्यार्थी आ 35 शिक्षक सहभागी है। विद्यार्थी सिखाई आ शिक्षक शिक्षण सीप सुधार करबाक उद्देश्य डेग फाउंडेशन पायला फाउंडेशन नेपाल संघक सहकार में 15 पहिने अभियान शुरू कयल ओ बतौलन। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय 2082 सालक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE के नतीजा प्रकाशन के तैयारी शुरू कलक है। चैत 19 गते से 29 गते धरि संचालन भेल एहि परीक्षाक लेल उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्त भेला पर परीक्षण एवं स्वयं परीक्षण शुरू कयल। एहि कार्यालय एहि विषाख 29 गते भीतर परीक्षाफल सार्वजनिक करबाक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौलक अछि। परीक्षा नियंत्रक टूक राज अधिकारी के अनुसार हाल 35 गोटे कर्मचारी टेबुलेशन में व्यस्त है। बैसाख 29 गते भीतर परीक्षाफल प्रकाशन करबाक लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE व्यवस्थापन तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षा निर्देशिका 2082 में परीक्षा संपन्न भेल अधिक में 3 भीतर उत्तर पुस्तिका परीक्षण कऽ सकबाक व्यवस्था है। बीतल वर्ष नियमित स्तर वृद्धि दिस मिलाकर 5,12,421 आ 21 गोटे विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी भेल छल। लालबंदी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 मेजरगंज झिरझिरे में मध्य प्रदेश सरकारक 15 लाख टका बजट में निर्माण कयल क्रिया पुत्री भवन प्रयोग में नहीं अबिते जीर्ण बन गेल अछि। स्थानीय वासी के अनुसार झिरझिरे स्थित जरुआ किनार में 4 पहले निर्माण कयल ई भवन अखन व्यवहारिक अवस्था में रहल अछि। ग्रामीण सब एहि के मादक पदार्थ सेवनकर्ताक अखाड़ा बनल कहत शिकायत कलक अछि। मेजरगंजक गायत्री महत थापा क्रियापुत्री भवन संगे रहल ऐतिहासिक झिरझिरे जरुआ क्षेत्र वाड़ा तथा नगरपालिकाक व्यवस्था में पड़ल बतौलन। ऐतिहासिक जरुआ में जथाभावी गंदगी फेंकल गेला कारण प्रदूषण बढ़ल आ क्रियापुत्री भवन मादक पदार्थ सेवनकर्ताक जमघटा स्थल बनल विषय में नगरपालिका कार्यालय में डेलीगेशन मार्फत ध्यानाकर्षण कराओल आ कोनो सुनवाई नहीं भेल। स्थानीय वासी सभक कथन रहल थापा ई शिकायत कलन। स्थानीय के अनुसार भवन निर्माण भेल से इम्हर एखन धरि एक बेर सेहो प्रयोग में नहीं आयल अछि। परिवारक सदस्यक मृत्यु भेलाक बाद 13 क्रिया संस्कार करबाक प्रयोजन के लेल निर्माण कयल गेलाक बावजूदो प्रयोग में नहीं अबिते ओ जीर्ण बनि गेल समाचार प्राप्त भेल अछि। काठमांडू पथकाक विभिन्न स्थान में चोरी भेल 65 थान मोटरसाइकिल तथा स्कूटर भेटलाक बाद संबंधित धनी के हस्तांतरण कयल गेल अछि। उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय में आई आयोजित कार्यक्रम में भेटल 45 मोटरसाइकिल 20 स्कूटर संबंधित सवारी साथ धनी के जिम्मा लगाओल गेल अछि। कार्यक्रम में कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी पछला समय उपत्यका में मोटरसाइकिल तथा स्कूटर चोरी घटना बढ़ित गेलाक कारण नियंत्रणक लेल विशेष रणनीतिक संग प्रहरी परिचालन कयल जानकारी दलन। ओ सादा पोशाक में खटाओल विशेष टोली विभिन्न स्थान में निगरानी खोतला तथा सूचनाक आधार पर अभियान संचालन करते आयल बतौलन। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारी कहलन जो उपत्यका में मोटरसाइकिल चोरी घटना बढ़ लगलाक बाद हमसब सादा पोशाक में टोली खटाक खोज तलाश करय लागल छी। टोली उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहल अछि।
उठवास बन्द करू, भूमि आवासक अधिकार सुनिश्चित करू नामक मूल नारा सहित राष्ट्र भूमि अधिकार मंच जिला कार्य समिति रौतहट चंद्रनिगापुर में आए बृहत रैली तथा सभा का आयोजन कलक। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार सबक उल्लेखीय सहभागिता रहल कार्यक्रम में सैकड़ों भूमि आवासक अधिकार सुनिश्चित करबाक मांग करित प्रदर्शन कलक। डिवीजन वन कार्यालय चंद्रनिगापुर से शुरू भेल रैली बाजारक विभिन्न भाग परिक्रमा करित तीनकुने पार्क में पहुँच के कुन सभा में परिणत भेल छल। रेडियो नेपाल से सुनल छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद का बजट अधिवेशन कल से होगा शुरू। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम कल संघीय संसद की संयुक्त बैठक में होंगे प्रस्तुत। प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश संवैधानिक दायरे के भीतर ही हुई है, रासोपा सभापति रविला में जाने का कथन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE का परिणाम परसों तक सार्वजनिक करने की है तैयारी। और यूक्रेन में युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कथन। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद का बजट अधिवेशन कल से प्रारंभ हो रहा है। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की अलग अलग बैठकें दोपहर 2 बजे बैठेंगी। संसद सचिवालय के अनुसार सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083, संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि प्रथम संशोधन अध्यादेश 2083 सहित 8 अध्यादेश प्रस्तुत किए जाने की कार्यसूची है। राष्ट्रीय सभा की बैठक में भी ये अध्यादेश पेश किए जाएंगे। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम कल संघीय संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति अपराह्न 4 बजे सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश संविधान के दायरे में रहकर की गई है। आज पार्टी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा सांसदों के लिए आयोजित प्रशिक्षण के समापन समारोह में सभापति लामिछाने ने कहा कि संवैधानिक परिषद और प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान सम्मत है। बंटवारे में विश्वास न होने की बात कहते हुए उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीशों की सूची के आधार पर संवैधानिक परिषद ने प्रधान न्यायाधीश का चयन किया है। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि कानून बनाते समय जनता के हित और भावनाओं को केंद्र में रखा जाए। सभापति लामिछाने ने स्पष्ट किया कि देश की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यादेश लाए गए हैं और पार्टी नेतृत्व वाली सरकार जनता के हित से बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतिगत कमजोरियों को सुधारने और विकास कार्यों में गति लाने के लिए अध्यादेश लाए गए हैं और ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे देश और नागरिकों को कठिनाई हो। उन्होंने कहा कि आम नागरिक समाज और देश रासोपा को देख रहे हैं, इसलिए सांसदों को देश निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये प्रतिबद्धता भी जताई कि सुकुम्बासी प्रबंधन के लिए सरकार सक्रिय है और किसी को भी बिना विकल्प के बेघर नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय ने वर्ष 2082 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के परिणाम प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। गत चैत 19 से 29 गत तक आयोजित परीक्षा का परिणाम इसी वैशाख 29 गते सार्वजनिक करने का लक्ष्य राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने रखा है। परीक्षा नियंत्रक टुकराज अधिकारी के अनुसार फिलहाल 35 कर्मचारी टेबुलेशन कार्य में व्यस्त हैं और वैशाख 29 गते तक परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष नियमित और ग्रेड वृद्धि दोनों श्रेणियों में कुल 5,12,421 विद्यार्थी शामिल हुए थे। चितवन की भरतपुर महानगर पालिका 4 धर्मचौक स्थित चौतारी पार्टी पैलेस में आयोजित विवाह भोज खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग के कारण बीमार होने वालों की संख्या 93 पहुंच गई है। इनमें से 50 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख SP गोविंद पुरी के अनुसार वैशाख 23 गते आयोजित भोज में शामिल लोग बीमार पड़ने लगे थे। बीमारों का इलाज भरतपुर अस्पताल चितवन मेडिकल कॉलेज और कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया जा रहा है। कुछ लोगों का इलाज काठमांडू स्थित सिविल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी चल रहा है। अब तक बीमार हुए 93 लोगों में से 50 उपचाररत हैं। 2 लोगों को सघन उपचार कक्ष में रखकर इलाज किया गया था। स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद उन्हें वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी मरीजों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है, SP पुरी ने कहा। घटना के बाद पार्टी पैलेस से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण डिवीजन कार्यालय इस मामले की आगे की जांच करेगा। बीमार लोगों में उच्च रक्तचाप, तेज बुखार और दस्त जैसे लक्षण देखे गए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# हेस डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। झापा में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार पड़ गए हैं। झापा की 12 दशी गांव पालिका 2 बुट्टा बारी निवासी तेज बहादुर खवास के परिवार ने आज सुबह भोजन में जंगली मशरूम की सब्जी बनाकर खाने के बाद स्वास्थ्य समस्या महसूस की। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी खगेंद्र बहादुर खड़का के अनुसार जंगल से लाए गए मशरूम पकाकर खाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार होने वालों में 50 वर्षीय कमला माया खवास, 31 वर्षीय दिल्ली खवास, 20 वर्षीय अनिता खवास सहित 8 बच्चे शामिल हैं। बीमारों को तत्काल इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर ले जाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद 9 लोगों को आगे के इलाज के लिए दमक स्थित बाल अस्पताल भेजा गया है। खड़का के अनुसार बीमारों में 2 लोगों की स्थिति मध्यम जबकि अन्य की हालत सामान्य है। इस बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जंगली मशरूम खाने से विषाक्तता और स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, इसलिए पहचान न किए गए मशरूम का सेवन न करें। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ने सरकार द्वारा घोषित मूल्य पारदर्शिता सप्ताह को पूर्ण समर्थन करते हुए देशभर के उद्योगी और व्यवसायियों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने इसी वैशाख 28 से आगामी जेठ 3 तक देशव्यापी रूप से मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसके साथ महासंघ ने अपनी एकजुटता व्यक्त की है। आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में महासंघ ने विश्वास व्यक्त किया है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में एक रूपता लाने और स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण बनाने में यह अभियान प्रभावी होगा। महासंघ ने मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार अपने सदस्य उद्योग वाणिज्य संघों, वस्तुगत संघों और संबद्ध व्यवसायियों से आग्रह किया है कि सभी उद्योगी, आयातकर्ता, सप्लायर, थोक तथा खुदरा विक्रेता अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अद्यतन मूल्य सूची अनिवार्य रूप से और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। महासंघ ने जिला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघों से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के बाजारों में मूल्य सूची लगाई गई है या नहीं, इसकी पुष्टि करें और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हुए इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। डिवीजन वन कार्यालय चितवन ने सड़क किनारे स्थित जोखिमपूर्ण पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपटारी से देवघाट तक जोखिम के रूप में चिन्हित पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। देवघाट क्षेत्र विकास समिति पिछले 10 वर्षों से लगातार पेड़ों की कटाई के लिए पहल कर रही थी। इसी क्रम में इस वर्ष आपटारी से देवघाट तक 25 पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। समिति ने इस सड़क खंड में मौजूद 62 पेड़ों को जोखिमपूर्ण बताते हुए कटाई की मांग की थी। डिवीजन वन कार्यालय चितवन के प्रमुख विष्णु प्रसाद आचार्य के अनुसार इस सड़क खंड के 10 पेड़ सूख चुके थे, जिन्हें पहले ही काटा जा चुका है। वे पेड़ नियमित प्रक्रिया के तहत हटाए गए थे। उन्होंने बताया कि अन्य पेड़ों की भी अध्ययन कर आवश्यकता अनुसार कटाई की जाएगी। वैशाख महीने के भीतर देवघाट क्षेत्र विकास समिति पेड़ों की कटाई कर वन कार्यालय को सौंपेगी और जेठ महीने में उन लकड़ियों की टेंडर के माध्यम से बिक्री की जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद शांति की उम्मीदें बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार बनाने का आरोप लगाया। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब शांति की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शनिवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की शुरुआत हुई है और दोनों देशों ने हजार हजार युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। इसे युद्ध शुरू होने के बाद बंदियों के सबसे बड़े आदान प्रदानों में से एक माना जा रहा है। मॉस्को में आयोजित रूस के विक्ट्री डे समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि मॉस्को 4 साल से अधिक समय तक चले भीषण संघर्ष के बाद बातचीत के चरण की तैयारी कर रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद का बजट अधिवेशन कल से होगा शुरू। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम कल संघीय संसद की संयुक्त बैठक में होंगे प्रस्तुत। प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश संवैधानिक दायरे के भीतर ही हुई है, रासोपा सभापति रवि लामिछाने का कथन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE का परिणाम परसों तक सार्वजनिक करने की है तैयारी। और यूक्रेन में युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।

पशुपति गोविंद राधे पशुपति भक्त राम व्यास बता दे राधा गोविंद गीत। भगवान श्री राम एवं भगवान शंकर जी लीला क्षेत्र में परस्पर एक अर्का को भक्ति गर्छन्। यद्यपि राम शिव श्री कृष्ण एक ही तत्व हुन् तथापि श्री राम का पक्का भक्त भोलेनाथ ने हुन्। भोलेनाथ हरदम उन्हें श्री राम को ध्यान में निमग्न रहन्छन्। आशुतोष भगवान भोलेनाथ को चरणारविंद में प्रेम पुष्प अर्पित करते कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँ हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। कार्यक्रम को शुभारंभ करूं पंचाक्षर मंत्र द्वारा। इस पंचाक्षर मंत्र में जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज ने ब्रज भाषा में अन्य याचना पनि गर्नुभएको छ, जसको आशय श्री कृष्ण प्रेम भक्तिलाई लक्षित गरिएको छ।